0: मुन्ना कोबा की है ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरा को वैन्ना हिंग कमें ने अफन थी कंको लन्ना
1: थी को तुम हाउ द है रंगल लाए थी हैं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन ना है दी मुन्ना वरहा उपावे
3: ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް ބަލި ފެތުރުދާނެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ?
4: ބިހިނެގުމުގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ބިހިނެގުމަށް ފަހު ހަތަރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތުވެ.
5: ހިމަބިހިގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިޖެނަމަ ލަސްނުކުރަވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ.
6: ދުނިޔޭގެ ހަތަރު ބިތުން
7: ރާޖޭގެ އުތުރާ ދެކުނުން
6: ಖಬರಾ ಮೌಲೂಮಾತ್
7: ಒಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
6: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
7: ಎಂಹ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 89 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: जिना सुल में मौसम रंगलो वाह का में लगाएगा सब अखी आएंगे तो मैं तो करने हदा हमें तो तुम लोग
1: मैं तो एक बार तंगल फिनी कौन नों तर मैं तो मेरा होनो का तो है
0: फिनी
1: जहे कम मम्मी वाणी
0: मैं तो कोरी मैं तो
1: तंगल कोरी दो है के कम सरी ते दो है मैं यार अगर 33 में ठिंगे फिर मालूम में हम एक तरह के ख्याल फुट तक आदि मैं मेंबर लानी मैं तो अलग में बाहर के दक्कन मैं मालूम है कि कोरी में समा नन्ना मम्मी आ हैं ऑनलाइन मंच से तक उन तक के तिकट हुआ फैसा है गुले मामला तक कुरुम का समाल करने जहे कंधे ते की को बाहिए अलग में के मेरे को फुर्त में बैवरी है कि आहुमत
0: अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू रब्बा जगह के दम साक्षी रजीन तो जिना तालु के बोले ने तो रोगा है कमिंग कम को
1: अहमद तो विदाल जाती हम उलेनी आलु गोंडु के अडुगे खंत एम रंगलंग एगो टनडी ए बोले दे तो कुडा कुडा कुडा कमे अहमद के ने तो
2: नंगला एगो तो साक्षी रो
0: आ के तो
2: ए मालूम तो सका वाह के नंगला में है कुरे एगो तो
0: कुरे गंद
2: आलु गोंडु की मी प्रोग्राम फेसनेस रो फ्रागिंग वारं आम में तो क्या है कुमार तेरे बाहा विदाल गोतं वारा बार का मस्जिद करें मुझे कब साउंड करना है यंदा बेफला वाला की इन्हें तो एक को मौकों बागो तक की किबे अपन वारा बार का वाह विदाल वे में नंबर गुरुवासे हम में प्रोग्राम के मेहनत करेगा सुरुगो हम स्वान्दिम्स किबे अपन खान विदाल वे हम वारा बार का वा� पासिया का तत्त्व का बदला है मिसाल के बनाने में सरकार को पिया का बदलो खोलने में सोलने को अनेक का बदलो कोई सोलने को मिहुरिया का बकल एक अमी पासिया से बोलना कमी වංහනා වාතියේ අල්ගොන මෙන්න මේගේ නැතිජා රගලන වන හෙම එවස් වේපලක එහෙන් හදවාස අල්ගොන මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවල් බොලති නිමත්තක අල්ගොන මෙන්න හදාකුවාස අල්ගොන මෙන්න ඒ ප්‍රගස් උදේ වාස අල්ගොන මෙන්න ඒක ප්‍රගස් දීම අල්ගොන මෙන්නසේ ඒක ගෙල්ලුන් තක මෙහුරිය මේ kame besmi libeni ema eves befla ko hegota nado mi algonum debe niyamatu algonum impact time se kura base allah subhanahu wa taala algonum kura base katu ko barakal base ami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: shukriya ingeta ahmad
0: ya
1: da ahmad war bud nasihate mi debe ingeta mikan kan mi ko tak kura mi hun mihen mikan kan nu kuruma mi hage gatu ko algonum na le for war bud fasihate ke ke du itake ke mi ge beinu he yogatu ko kuruma nasihate le
0: debe ਮੇਗਾ ਇਤਰਵਤਾ ਕੋਰੀਮ ਹਦਨ ਕੰਕਨ ਨੁਕਮਦਾਨ ਕੋ ਤੇਗਵਾਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇਗੇ ਤਾ ਅਲੋ ਮੇ ਮੇ ਤਿਵੇ ਫਲੋਂ ਆਰੋ ਮੇ ਹਾਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਸਤਾ ਤਕੋ ਤਕਹਿਤੀ ਗਾ ਤੁਮਾ ਫੈਸਾ ਗੋ ਗੁੜੇ ਮਾਮਦਾ ਤਕ ਕੋ ਮੋਗ ਸਮਾਲ ਕੰਦੇ ਜੇ ਕੰਤ ਤੇ ਕੋ ਬਹਿਏ ਅਲੋ ਮੇ ਤਿਵੇ ਫਨਾਇ ਕੋ ਕੋਰੀ ਦਾਨ ਗੇ ਤਾ ਦੇ ਹਮ ਦੇ ਮੇ ਕੋਮਸਰ ਕਾ ਸ਼ਕਵਾ ਇਸ ਕੋ ਰਵੇ ਇਨ ਵਸ ਤਿਵੇ ਫਲੋਂ ਅਡਵਸੋਂ ਤਿ ਬੈਰ ਮੈਂ ਗੇ ਡਵੈਨ ਨਵਾਨੀ ਗੇ ਤਾ ਅਹਮਦ ਸ਼ਕਵਾ ਅਲੋ ਮੇ ਗਾ ਬੋਲ ਕੋ ਰੰਗੇ ਤਾ ਮੇ ਗੇ ਡਵੈਨ ਅਲੋ ਮੇ ਹਮ ਇਕ ਬੇ ਫਨਾ ਗਲੋ ਮੇ ਗੰਦਨੀ ਗੇ ਤਾ ਤਿਵੇ ਫਲੋਂ ਗੁਲਵਾ ਅਲੋ ਮੇ ਤਿਵੇ ਫਨਾ ਗੁਲਾਨਾ ਅਲੋ ਮੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਤਿਨ ਤਿਨ ਹਤਰ ਸੁਮਿੰਗ ਹੈ ਦੈਨ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਮ ਦੇ ਰਕੋ ਨਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੇਨ ਕਸ ਤਿਵੇ ਫਨਾ ਗੇ ਡਵੈਨ ਨਵਾਨੀ ਦਤ ਇਹ ਮੇ ਤਸ ਕੋਰੇ ਵਡੈਨ ਨਵੇਨੇ ਦੈਨ ਲਵੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਮੇ ਅਲੋ ਮੇ ਕੋਮੇ ਦੋ ਕੋਸ ਹੁਲਵਾਲਾ ਫਰਸਤੇ ਹਾਈ ਗੜੀ ਫਨਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਵੇ ਮੇ ਦਸ ਸਮੇ ਫਰਸਤ ਸਲ ਮੇ ਹੁਲਵਾਲਾ ਮੇ ਤਿਵਿੰਗੇ ਤਾ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देहराज्य गाडुगे मिगडीगे मुहिम खबरतवगे सुरुखेतवगे त्रेगा बोडती मसलतका वशाजहे हालोतके हुद्दवया देववानकमा रईसल जुम्हूरिया विदाळवेचे कुदि व्यापारता मिहारवर बोडा बारवर कुरुमा इतरु मसेकेत सरकारम को देववानकमा रईसल जुम्हूरिया विदाळवेचे फळुरत्तका फळुता कुय्यदिनुमगे आ कानून नायको इक्तिसादन आ दिरुमेल्लिबि दौलतन एगे सबबु मनफातकेको आ फुरसत्तके फहिवेगिन दानिकमा मस्सेरकमा दंडवेरकमा खंडुगे वसीलत्तका बेहे वजीर विदाळवेचे एचडीसीगे बेलुमगे दशगावा एम्मेदु इमारततवगे सलामता रक्कातरकन इतुरन हरदना कुरमा एही तरकन फोरकोदिनुमगे प्रोग्रामे एचडीसीम फशाफी गजाइन फेंकंडालमुन मिलेनिन हामीहुन फेनेचेहेचे देवराज्य गाडुगे हेंदुनु नुवाईगे खबराको एहुंतर नामे बदल कुरनी अरुम फातमत सीनत दें खबर तो के तस्खीलायको कुरिये ताना राइस जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा वाकिम बदल कुरम बेनुम वा रई तुन्ना ए फुरसत होदा दिनुमगे गुतुं सरकारुम फशाफावा रई तुंगे अडु प्रोग्रामगे मिहफ्तागे प्रोग्राम गाविस गीना बयकुवनी एमीहुंगे हुरि कंबडुवंता एमनिक फाना हिस्सा कुरवाफा मीगे तरेगा एम्मे गिन फरायत्तकुं फाहग कुफावनी बोहिया वहिकमा सिही दायरा इंहुरि कंबुडुवंता रईस्वनी बुडति मसलतका वशाजहे हल्लुतकें होद्दवैदिव्वानिकमा विदाळेफा रईतुंगे अडुगे हतरवन प्रोग्राम गा रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा बदल कुरेब्बे गिन रईतुं फाहग कुफावनी बोहिया वहिकमा गुळुं हुरि मसलता एगुतुं फिरिमी हानियावुंगे कुरिं हिया फ्लेट लिबुणुकमगे लियुं लिबि एनमेस फिरिमी हानियावुमुं फ्लेट नुदिं मसलेका मालेगा दिरिउलेता एतं अहरे वीनमवेस एकि सबब तका हुरे बोहिया वहिकमगे स्कीम तका शरत हम नुवा मसलता बाइफरातकुं वनी फाहग कुफ एरईतुं फाहग कुरिकंकमं इशारे कुरव्वा रईसुल जुम्हूरिया विदाळवी ए फरायत्तकुं फाहग कुरिकंकम बल्लवाणिकमशा रईतुन दिमाय फावा बोहिया वहिकमगे मसलया एनुं मिस मसलतका वशाजहे जुम्ला हल्लुतकें होद्दवैदेवमं एमनिक फान मसिके कुरव्वमुं गेंदवाकमा बोहिया वहिकमगे इतुरुं बै फरायत्तकुं वणी सिही दायरागा हुरि कंबुडुवंतवेस रईसा हिस्सा कोफ एगुदु माले सरहद्दुगे आबादिया एव्वर सिहि खिदमे फुला कुरन जेहिफा वाकमा आसंदेया गुळिगें हुरि कंबुडुवं तवणी हिस्सा कोफ कुदि व्यापारत मिहारवरे बोड बारवरे कुरुमं इतुरु मस्सेकेत सरकारं कोद्दिव्वाणिकमा रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ विदाळवेचे रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मिहिं विदाळवी आम रईतुं एमनिक फाना बदलको कंबुडुवंतका खियाल हुशेळुम फुर्सत तिनुमा सरकारुं कुरियगिंदा रईतुंगे अडु प्रोग्रामगा आम रईतकु देक्कि वाहकतकं इशारा कुरव्वा देक्क्वे वाहक फुळुगा रईतुंगे अडुगे हतरवन एपिसोडगा रईसा बदल कुरि व्यफार वेरियकु कंबुडुवंता हिस्सा कुरि कुदि व्यफार वेरिन मिहार दिमावा दतितका गुळेगुतुं फायतुवी दिहवरकं अहरु हा दाल हा अलिफ आदि शवीन अतुलुगा बेकरीगे खिदमे फोर कोद्देमुं अन्ना ए विफार वेरिया फाहग कुरि गुतुगा मिहार दुनियागे बाजारुगा तकेतीगे अगु उफुलुन नमवेस राज्येगा विक्का बाय तकेतीगे अगुतका बदलिं एस्वेनुवे एंकमुं व्यफारीगे फायदायं एकम गेनेदेवे असर कुराकमं एना बुणि एना फाहग कुरि गुतुगा एफद विफारतकुं तेला हकतेया बोडु हेदे कुरंजहे आदि काबोत किच्चा गुळुं हुरि व्यफारतक दिमावा इतुरु गुंजहुं तकविस एना आले अळुवाले एगे तरेगा ए व्यफारतकुं उफद्दा बावतुके उफेद्दुंता बेरुं अगुहेवको गेनावमुं दिवेहि व्यफार वेरिन्ना दतिवाकमं एना बुणि बेरुगु एफेद्दुंतका अगुगे गुतुं दिवेहि व्यफारतक वाद नुकुरेवे सबबकी बेरुं रो मटेरियल एतेरिकोग्गें बेकरीगे खिदमे देंजहुं कमं एना बुणि रईस्वणि ए खियालतं अडुवस्सवा एकंकम रियायक कुरवाणिकम विदाळवेफ फळुरत्तका फळुता कुय्यदिनुमगे आ कानून नायको इक्तिसादन आ दिरुमेल्लिबि दौलतन एगे सबबु मनफातकेको आ फुरसत्तके फहिवेगिन दानिकमा मस्सेरकमा दंडवेरकमा खंडुगे वसीलत्तका बेहे वजीर अहमद शियाम विदाळवेचे वजीर मिहिं विदाळवी राज्येगे फळुतका फळुरत्ता कुय्यदिनुमा गुळे बिलु रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ तस्दीक कुरेवुमा गुळिगें मिदिया होमदोहु बेवि न्यूस्वेरिंगे बद्दलवुमगा वाहक फुळदक्वमु मिदिया होमदोहु रईसुल जुम्हूरिया तस्दीक कुरेवि राज्येगे फळुतका फळुरत्ता कुय्यदिनुमा गुळे कानूनु बेफावणी दिवे इक्तिसादं इन्किलाबी बोडति फायदातके गेनेस्तेने मुहिम फिशुमका मिया कानून अमल कुरम फिशुमायकु नवारस्तेक अड्डे अव्वना हरुम फिशिगें अमल कुरमुंगा कानून वणि उइफा

मेहर गडिंग मेंदुरकुरी एगार गड़ी सालिस फर्स्ट मिनट दिंगलगन मिंगेन स्टेनी कीरति गुरु अंकियवं

मी दिव्यराज्य कैडू मेंदुर बारकडीनु अमेटुक मिगनस्तेनी मेंदुर वगुतु पंगिया पंगितुआ।

0: Mamma, බඩු හැවෙච්ච.
1: දල්ෆ්ලා සෝනියා කාතිබුනේ. මම බෙච්චේ මිගේ මුළුවා.
0: පප්පා ගඩි ජෙහනිය.
2: දල්ෆ්ලා මඩු කොබ්බද?
3: සෝනියා. දෙබල් මාෂ ස්කූලෙන් දා.
4: तुम्ही नहीं तो कहा था कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस वजह से भी
5: मामा फोन एक का हाँ माधमारे तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैसे फोन का डोंटा
6: कोको तोंते कमी के डिगाले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहेन हिं गुलुंता बदहे कुराफा दान एम गातुगावा गुलुंतका एम फुरतम इस्कंदे मा

एक ही रहा। अस्सलाम वालेकुम दिरुळमा की हिंगम जहुमा उफा हिन्नु तनवस्कमा हिद्दतिक दिरुळम गे मी रहा तका कुनमतिला कामयाब होदुमा कोम्मे मिहकुस मस्सके कुरमान एक ही रहा गे मिहफ्ता गे ब्याग मिगेनस्तनी बाइक दिरुळमगा कुनमतिला जहुनु मिफदा तफातुर है अडोसवालपा

एक ही रहा। एक ही रहा का मिहफ्ता का मिगनस्तिंग ड्रामा के अस्तकी मशहूर वाहक लिवंतरिया अल्फालिल मडुल मोहम्मद वहीद लिवाफावा सकीना के हिद्दतिकं ड्रामा उफद्दाय कुलवाली अलगोंड अली राजी ड्रामा कुलमगा बैवरवी सकीना हलीमत मुसा इब्राहिम सायद अहमद मरियम फुलु फातमत वहीदा फातमा दाता फातमत मजिया आदम हुसैन नाजिम अदे शरीफ अहमद सिमाल

0: ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸಕೀವಿಸ್ ಮರುಗ ರಹ ಲಿಬಿಗನ್ನಾನೇ ಇಚ್ಛಿಕೆ ಅದಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಕುಳ ಅಮಳ್ತಕ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುನ್ನ ಫುರಿಹಮ ಎಜ್ಜಜ ದಿವ್ವಾನ ಕಂಕಶ್ವರಿ ಪ್ರಿಯಾಮೆದ್ದು ಹುನ್ನೆ ಫಹೆ ನರ ಕೈಂ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕುರವ್ವ ಸ್ವರುಗೆ ವೆದ್ದಿವಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶ ಫಹೆ ಎಮೀಹ ಕು ನಸೀಬ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ಫಿ ಕಂಕಶ್ವರೆ ಕೆಹಿವಿರಿ ಕಂಗೆ ವಗುತಿ ಉಫಲಿದ್ದೇ ಚಿಕ್ಕಂಗಾ ಮೆನುವಿ ದುನಿಯೇಗೆ ದಿರಿಯುಳುನ್ನುವೆ
1: ইরাদ কুরবিয়া সোলি হুঙ্গ বগিচা মিসিল স্তাগা প্রোগ্রাম কাকি বদল কলম উম্মিদ কুরম বাকিওয়ালা মিয়াদগে প্রোগ্রাম কলগর মাই মিহমান আল হাদিস তা মুশাল ওয়া দেবী আল কারি আব্দুল হামিদ মুসা শরহ বলওয়া দেবী আশেহ আহমদ সমীর ইব্রাহিম সোলি হুঙ্গ বগিচা মি প্রোগ্রাম ফদ্দা তিয়ারিস্তা কমি হুশেলি অলকন চকিয়া লবতে হুন তেরন উফাওয়ারি কমা বাজ জরি কমা এদে আসসালামু আলাইকুম